0: कमल सोम जैसा 420 बिल्ले सी 720 बिल्ले 330 थंजरारी जक को बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
1: अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह
0: ये जारा बाबा आनी
1: जाऊं कर रही भाई कम से कर रही
0: और मारू
1: आवन ने बैंक
0: भाई भाई बताए न हम हम ना देख बिना निगा रे में
1: जाऊं कर रही बाबा
0: मारू rek ñewul ma ci sikkar sama deg